जैसे चिप कंग जोंली ली छंग दा दुबे छि नेसम ने ने छि नेब जे ने वर तालिन द द जेम बी आया ती के ताओ सी लंग तक कब जब दन बरश गि जेरे कब दर जोंली ली छंग गो सुम जाय गुर शि गि जेम बा मासल छे म गि खि छि पनी जोंग गुर लंग तक ला शि से योंग खान जे शेर जि ल कन दन ता दे मन जो छों ली रि कक ती मर जि ग म द पे रि शा जेरे बंग का ला जा कि जे जोंली थाली ख द गे ने यी जोंली उ ली बा हा सग स थंग ग जोंली बे के जि नो फु 苏克里总理吉敏西蒙古的亚克杰总理吴奇尔利海山格总理斯潘亚基吉阿朗德拉西基吉里亚克布登萨克勒格切勒格内托比斯中等总理尔格中年主的吉里格提马东吉格丁加勒阿朗德拉西基吉里

जैसे चिप कंग जोंग ली ली चंग दा जुबे ची नेसम ने ने ची नेब्र ने ने वर तालिन द द जेम बी आया टी के ताओ सी लंग तक कब जब दन बरश गिजे रे कब दर जोंग ली ली चंग गो सुम जाय गुर शि गिजे बा मासल छेम ग खि छि पने जोंग गुर लंग तक ला शि से योंग खान जे शेर जि ल कन दन तंग दे मन जो छोंग ली रिक कन थिमर जि ग म ल पेरी शा जे रे बंग का ला जा किप जे जोंग ली थाली क दं के ने ई जोंग ली उ ली बा हा सग स थंग ग जोंग ली बे क जि नो फु 苏库里总理吉明西蒙古亚克杰总理吴奇尔利海山格总理斯派亚基吉朗特格拉西吉里亚克布登萨克勒格切勒尼托比斯中等总理尔格中年主日吉里尔格提马尔东吉格丁加拉格朗特格拉西吉里